0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

बाबू सुन कह बस सुन कह ये संतेला अनमाहिम सा हलवा दे तोय तुला गपोरी माहिम सा हलवा दे तोय तुला।

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: M-A-D, mad. Mad माने पागल, B-O-Y, boy. Boy माने

तो गुरुदेव फरमाते थे कि एक को खुश रखो तो बाकी सब नाराज हो जाते हैं, और एक को नाराज करो तो बाकी सब खुश हो जाते हैं। एक को तृप्त करो तो बाकी सब भूखी हो जाती हैं, और एक को भूखा रखो तो बाकी सब तृप्त हो जाते हैं। और तीर्थंकर महावीर फरमाते कि जीवन को विनाश से विकास की ओर ले जाना हो तो संसार का रस लेने वाली ये जो जुबान है, रसनेन्द्रिय है, ये बाहर से रस लेती है। इसके अनादि काल की एक ही ट्रेनिंग है कि रस बाहर से लेना है। उपनिषद के ऋषियों ने कहा रसो वही सह, रस ही ब्रह्मा है, रस ही परमात्मा है। लेकिन वो रस बाहर का नहीं, जुबान के हमें ट्रेनिंग दी है

कंडीशन माइंड हो गया है कि बाहर से रस लिए बिना एनर्जी नहीं आएगी। और प्रभु ने कहा कि जब तक तू बाहर का रस लेना बंद नहीं करेगा तब तक तुझे परमात्मा का रस, अंदर का रस नहीं मिलेगा। इसलिए तप, शरीर को दुख देने के लिए तप नहीं है, शरीर को परेशान करने के लिए तप नहीं है। आचार्य भगवान को एक जवान ने सवाल पूछा था कि आत्मा का कल्याण करने के लिए शरीर को तपाना, शरीर को दुख देना, शरीर को कष्ट देना ये क्यों जरूरी है? और गुरुदेव ने बहुत सिंपल भाषा में उत्तर दिया था, तेरी मां को जाकर पूछ, मक्खन तपाना हो तो बिना बर्तन को तपाए मक्खन तपा सकते हैं क्या? हेलो। और यदि कहीं मक्खन को सीधा तपाया तो हाथ में कुछ आएगा क्या? मक्खन को तपाना हो तो बर्तन को तपाना ही पड़ता है। ये आत्मा के श्रद्धा का, आत्मा के संयम का, आत्मा के ज्ञान का, मक्खन यदि तपाना हो तो शरीर के बर्तन को तपाना ही होगा। इसको तपाए बिना मैं रुका हूं कि अगली बात आपसे कहूं, आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ। भारतीय संस्कृति ने संयम और तप का संदेश दिया, तप और अहिंसा का संदेश दिया, और इस समय भारत पर ही नहीं पूरी दुनिया पर उन विकृतियों को संस्कृति बनाने वाले का बोलबाला है जिन्होंने दुनिया को हिंसा और असंयम दिया। और ऐसा हिंसा और असंयम दिया कि आज घर घर, गली गली के हिंसा और असंयम के ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं कि लगता है आदमी ने आदमी का दुश्मन बनने का तय कर रखा है। सारे रेफरेंस मेरे से अधिक आपके पास है। कल की ही पेपर में आई हुई खबर विचलित कर गई। चार भाइयों का परिवार एक घर में रहता है और एक भाई ने गीत लगाए, आवाज लाउड रखा और इतनी सी बात पर दोनों भाइयों में संघर्ष हुआ, चारों भाइयों में संघर्ष हुआ और दोनों भाइयों ने मिलकर गए अपने सगे भाई को और भतीजे को अगला वाक्य बोलने की जरूरत नहीं है। ये किसने सिखाया कि जो तेरी मानता नहीं है उसको जीने का अधिकार नहीं है? और अपना व्यक्ति भी अपनी बात नहीं माने तो उसको जीने का अधिकार नहीं, किसने सिखाया?
भारत की तो परंपरा श्री राम की है, उत्सव की वेला में भी कैकेयी ने कहा कि तू वनवास चला जा, भरत को राज करना है। और न मानने जैसी बात भी राम मुस्कुराते मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं, ये हमारी परंपरा है। छोटे बच्चों की बात नहीं, दोनों भाई केवल आवाज बड़ा हुआ है। और कब कहां से आई हिंसा, हिंसा कहां से आई, ये नॉन वेज से आई। अपनी भूख और अपनी जुबान को तृप्त करने के लिए जो किसी की जीवन की हत्या कर सकता है, उसको हत्या करने का चस्का लग गया है। और यहां तो कबूतर की जान बचाने के लिए स्वयं की जान का मांस काटकर देने वाले मेघरथ की परंपरा है। और इसलिए गुरुदेव का यह जन्मोत्सव उनके गीत गाने का उत्सव नहीं है, उनकी प्रशंसा करने का उत्सव नहीं है। और जो निरंतर इस सभा में है उनको पता ही है कि गीत गाने का काम उसका है, मैं तो गीत गाता ही नहीं हूं। ये उत्सव है जिन मूल्यों के लिए वो जिए, उन मूल्यों को स्वीकार करने का। जिस राह पर चल करके वो सबके श्रद्धेय बने, उस राह पर चलते हुए कम से कम आप अपने घर के तो भी श्रद्धे बन जाओ, इसलिए उत्सव है। यदि आपको लगता होगा कि हम गुरुदेव का नाम रोशन कर रहे हैं तो गलत फहमी है। ये उत्सव केवल इतना ही है कि गुरुदेव के कारण से तुम्हारा, तुम्हारे घर का, तुम्हारे समाज का, देश का जीवन रोशन हो जाए, इसलिए उत्सव है। उनका नाम तुम और हम क्या रोशन करेंगे, उनके रोशनी से अपना जीवन रोशन हो जाए। और इसलिए आज अयम्बिल तप है। कौन सा तप है? अयम्बिल तप है। और जो जो सुबह नाश्ता कर करके आए हैं वे भी स्वयं को तैयार कर ले। जो जो सुबह चाय पीकर के आए हैं वे भी स्वयं को तैयार कर ले। समझ में आ रही बात नहीं? जो जो चाय पी करके आए, दूध पी करके आए, नाश्ता कर करके आए हैं, वो भी स्वयं को तैयार कर ले कि जो किया सो किया, यहां से आगे कल के प्रवचन होने तक, कल का अयम्बिल नवगर मंत्र का जाप होने तक मैं अयम्बिल में ही रहूंगा। आज प्रवर्तक से जी नहीं पधार रहे हैं, इसलिए पचकान देने का स्वातंत्र्य मेरे पास है, है ना? तो तुम्हारा ये एक्सक्यूज होगा कि मर साहब अयम्बिल तक कर लेता मैं, लेकिन क्या करूं, सुबह सुबह मैंने ब्रश कर लिया, सुबह सुबह मैंने नाश्ता कर लिया, सुबह सुबह मैंने चाय पी ली। ओके, सुबह सुबह कर लिया ना, यहां से आगे तो मत कर। हेलो, बोलो ना। यहां से आगे बस एक समय अयम्बिल करना, अयम्बिल का आहार बन रहा ना, उतना ही लेना।
यहां से आगे एक समय आई मिल का, एक समय आई मिल का खाना लेना। सुबह जो किया वो ओ श्रमी ओ श्रमी ओ श्रमी, अगले 24 घंटे है ना। गणित कितने घंटे का है? 24 घंटे का है। आप सुबह आप नहीं लेते तो कल सुबह लेते हैं, यानी 24 घंटे के बाद आप लेते हैं। तो सुबह के 24 घंटे नहीं, 10 बजे के अगले, 9 बजे के अगले 24 घंटे, आज से 9 बजे से लेकर कल 9 बजे तक का आई एम बिल। हेलो, अरे खुशी मनाओ ना, है ना। पर अगली बार इशू करने में तो जाओ, नहीं तो केवल हमारा सब तो कही है, सवेरे अपन खाने गया तो भी अपन आई मिल पचका देवे, है ना। नथिंग, आज के लिए, आज के लिए, है ना। क्यों? कि गुरुदेव को आई एम बिल तप, और आई एम बिल तप पर गुरुदेव की आस्था। जब भी कोई किसी भी प्रकार की कोई फैमिली, कोई फाइनेंशियल, कोई फिजिकली, कोई साढ़े साढ़े साढ़े तक का विषय नहीं, पर लोगों लगता तो साढ़े साथी है।

बरस आपको। उनके पास तो कोई जाता परिवार कि मर साहब बेटे की शादी नहीं हो रही है और वो कह देते जैसा उनको लगता वैसा कहते, कहते 31 आई बिल कर ले, 41 आई बिल कर ले, 51 आई बिल कर ले और सैकड़ों परिवार मिलेंगे आपको। कितने सैकड़ों परिवार मिलेंगे कि जो आपको बताएंगे कि उन्होंने कहा हमने एम्बिल किया और काम हो गया, कोई पूजा नहीं कराई उन्होंने, आचार्य भगवान की परम आस्था किसी तप पर थी तो एम्बिल तप पर थी और उनका जन्मोत्सव मनाए और जन्मोत्सव में एम्बिल दिवस आए और उस दिन अपना एम्बिल नहीं करे और फिर कहे जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। ये क्या चरण झुकाया तुमने, ये क्या चरणों में शीश झुकाया, आनंद आनंद गाओ चला गुरु दरबारी आनंद अन खाईला मोकड़े हो चला। अरे एक दिन आएं बिल और देखो ना क्या जन्मोत्सव का माहौल चल रहा है कि 9 साल की बच्ची अठाई कर रही है। क्या उम्र है 9 साल की बच्ची, 8 साल के, 10 साल के, 11 साल के, 12 साल के। मैंने कल उसका नाम पूछा, पूरा नाम नहीं पूछा, क्या नाम पूछने की मुझे कम आदत है, फिर भी उसका पूछा, उसके माँ बाप का नाम नहीं पूछा, उसका सरनेम नहीं पूछा, क्या आदत नहीं है ना, तो उसने नाम बताया तो निर्वी, 9 साल की बच्ची और कर बेला पचक करके गई और माँ ने बताया दादी साथ में थी कि इसको अठाई करनी है, वो तो बखान में आती भी नहीं है, कहा बखान में आती भी नहीं है, वो तो स्कूल में गई है, थे तो बखान में आओ। हेलो क्या मजेदार बात है, वो दुकान में आए बिना माल परचेस करती है और तुम दुकान में गर्दी करके भी माल परचेस नहीं करते हो, तो आज क्या है, जिसको उपास है, बेला है, तेला है, चौला है, उसके अलावा नीचे बैठा हुआ कोई भी नहीं रहेगा। किन्हीं किन्हीं टेंशन आई अगले बखान सुनो उनको, अगला व्याख्यान सुनने का टेंशन किन किन को आया। ये जुबान दो जगह काम बिगाड़ती है, एक खाने में और एक बोलने में। कहां पर बोलो, एक खाने में और खा करके पेट बिगाड़ती है और बोल करके रिश्ते बिगाड़ती है। अरे साधन है, इस साधन से सिद्धि करनी चाहिए, इंद्रिया सारी क्या है, साधन है, उपकरण है, इन साधनों के माध्यम से मंजिल पर पहुंचना चाहिए कि मंजिल से भटकना चाहिए। साधन का उपयोग किस लिए करना चाहिए, सिद्धि के लिए करना चाहिए कि व्याधि के लिए करना चाहिए। जुबान भी क्या है, इंद्रिय है, साधन है, किसके लिए है, इसको ज्ञानेंद्रिय भी बना सकते हो और इसको कर्मेंद्रिय भी बना सकते हो, इसके माध्यम से कर्म का बंध भी कर सकते हो और इसके माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि भी कर सकते हो। फिर एक बार याद दिला दूं मैं आपको कि गुरुदेव ने अपने रसेंद्रिय को कितना ज्ञानेंद्रिय बनाया था, उनकी एक भी इंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं थी, उनकी हर इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय थी। मैंने उस दिन केवल जिक्र किया था तो उसका सीक्रेट ओपन कर रहा हूं, पूरा प्रसंग फिर दे रहा हूं एक बार।

0: 1890 की एज गुरुदेव की, इसी भूमि पर गुरुदेव विराजमान और स्वास्थ्य को देखते हुए मैंने कुछ नियमित घरों से आहार लाना शुरू किया गुरुदेव के लिए। 3-4 दिन ही बीते होंगे कि गुरुदेव ने पूछ लिया, प्रवीण गोत्री रोज एक ज घर से आती है क्या? ये तो आपको कहावत पता ही है, चोर के दाढ़े में तिनका, चोरा चमना चांद। और मुझे लगा किसी न किसी संत ने चुगली करी और मैंने गुरुदेव को पूछा, आपको किसने बताया? नहीं बोले, मुझे किसी ने बताया नहीं। मैंने कहा फिर कैसे आया आपके मन में? और गुरुदेव ने कहा 3 दिन से फलके का स्वाद एक जैसा है। हेलो, और फलका उन्होंने एक दिन भी कोरा नहीं दिया था, मैंने उनको सब्जी के साथ ही फलका दिया था। भैया रिंदे पर बैठ जाने चाहिए, बैठ जाने चाहिए। फलका मैंने उनको एक बार भी कोरा, फलका उन्होंने सब्जी के साथ ही खाया था। आज सब्जी के साथ फलका खाने के बाद फलके का स्वाद अलग और सब्जी का स्वाद अलग, कौन कौन आत्मे से ले सकता है? मैंने उस दिन केवल प्रसंग देख करके छोड़ा था, उसको पूरा खुला नहीं किया था, आज खुला करा। कर सकते हैं कि यो फल का रस स्वाद है, यो सब्जी रस स्वाद है, कर सकते हो क्या? क्यों? कि हमारी रसनेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय नहीं रही, वो कर्मेंद्रिय बन गई। वो केवल राग और द्वेष में उलझ गई, लाइक और डिसलाइक में उलझ कर रह गई, वो फेवरेट और अनफेवरेट में चले गई। ये मेरी फेवरेट डिश है, ये मेरी अनफेवरेट डिश है। आपने रसनेन्द्र के पास एक ही काम सौंपा है, लाइक डिसलाइक। लाइक मिला कि चेहरा खुश, डिसलाइक मिला कि चेहरे पर 12 बज गए। कभी आपने रसनेन्द्र को ज्ञानेन्द्रिय बनाया क्या? और यदि रसनेन्द्र को ज्ञानेन्द्रिय बना लेते, गुरुदेव के ही आनंद प्रवचन में एक कथा गई है। अकबान के बादशाह ने राजा भोज के दरबार में एक व्यक्ति को भेजा सुरमा लेकर के, आंख में डालने का सुरमा, और इतना ही सुरमा भेजा कि जिसमें केवल 2 आंखों में डाला जा सके। कितना सुरमा? इतना ही सुरमा भेजा कि 2 आंखों में डाला जाए। वो आया और राजा भोज के जो राजवैद्य था, उसकी उम्र के कारण से आंख अंधी हो गई थी, वो देख नहीं पाता था। राजा भोज ने उस वैद्य को बुलाया और उसको कहा कि वहां से ये सुरमा आया है और वहां से समाचार है कि जिसके आंखों में, आंधे की आंखों में भी ये सुरमा आंजोंगे तो उसको दिखना लग जाएगा। और उसके आंखों में शलाका लेकर के एक आंख में सुरमा डाला गया, थोड़ी देर चुर चुर चुर चुर चुर हुई और एक आंख से दिखने लगा, दूसरी शलाका उसको दी गई। आप और मैं होता तो क्या करते? दूसरी आंख में डाल लेते। लेकिन वो वैद्य था, वो ज्ञानी था, उसने वो सुरमा आंख में नहीं डाला, जुबान पर रखा। किस पर रखा? कितना सा? इतना सा। राजा ने बोले जुबान पर किस लिए? बोले राजन इस व्यक्ति को यहां रोक लो, कल इसको रिटर्न गिफ्ट देंगे और सेकंड डे वैद्य ने पूरी बरनी भर करके सुरमा लेकर के आया। बोले तेरे हकीम को मेरी ओर से गिफ्ट। बोले क्या किया? जुबान पर सुरमा रखा और उससे पता चला लिया कि सुरमा में क्या क्या कंटेंट्स पड़े हुए हैं, क्या क्या इंटीग्रेंट्स है उसमें, और उसके बल पर दूसरे दिन सुरमा बना करके दिया। जैन परंपरा में पादलिप्त सूर्य का जिक्र जाता है। पता नहीं ये विषय किधर निकल रहा है। पादलिप्त सूर्य का जिक्र जाता है, वे पांवों पर लेप लगाते थे। क्या करते थे? पांवों पर लेप लगाते थे और लेप लगा करके जैसे पांवों पर लेप लगाते जड़ी बूटी का और आसमान में उड़ जाते थे पंछी जैसा। एक महापुरुष तुम्हारे जैसा, उसने दीक्षा ली, सेवा में लगा और एक काम अपने पास पक्का पकड़ लिया कि गुरुजी जब आकाश में उड़कर घूम करके आ जाए तो उनके पांव धोने। क्या धोने? पांव धोने। और पांव धो करके गुरुजी ने लेप में कौन सा क्या क्या मसाला मिलाया है उसको खोजना। लंबे समय की उसकी साधना चलती रही और एक दिन उसको उस लेप के बहुत सारे रहस्य पता चले और उसने उसका लेप कर करके पांव पर लगाया, लेकिन वो केवल मुर्गे जितना ही उड़ रहा है। कितना उड़ रहा है? यहां से वहां तक, वहां से वहां तक। गुरुजी ने उसके तरफ देखा और उसको पूछा, क्या रे कैसे? बोले गुरुदेव आपके लेप में जितनी दवा है, जितना मसाला है, सब मैंने खोज लिया। बोले बोले कैसे? बोले पांव धोता था, चकता था और चक करके मैंने सारा पता चला गया, लेकिन सारा लगाने के बावजूद भी इतना ही हुआ है। धन्य उस गुरु को, धन्य उस शिष्य को। गुरु ने कहा तेरी हिम्मत को दान देता हूं, पर तूने इसको पानी में कलाया है। किस में कलाया है? पानी में कलाया है। इसको तू केवल चावल के कांजे में कला ले, ये कौन कर सकता है? पिज्जा, बर्गर, स्पाइसी है ना, शाही भोज, कॉफी पीने के लिए सुपा जाने वाले, गुटखा चबाने वाले, ये कर सकते हैं ना। हेलो, शराब पीने वाले, ये सारे लोग अपनी जुबान को जीवंत रख रहे हैं कि जुबान को मार रहे हैं? गुटखा खाने वाला व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी जुबान को, अपने लीवर को, अपने पूरे ज्ञान से तंत्र को जिंदा कर रहा है, डेवलप कर रहा है कि डोमिनेट कर रहा है कि बर्बाद कर रहा है? बुरा मत मानना। मैंने 3 दिन पहले प्रवर्तक सिंह जी को निवेदन किया कि जितने होटल है ना, जितने होटल है, वे सारे हॉस्पिटल के एजेंट है बिन कमीशन के। गुरुदेव ने अपनी जुबान को ही नहीं, पांचों इंद्रियों को ज्ञान इंद्रिय बना करके रखा था। उनकी एक भी इंद्रिय कर्मेंद्रिय बनी ही नहीं। फिर याद करिए कि केवल फलका का स्वाद बताना, कि फलके का स्वाद तीन दिन से एक जैसा ही है। अपने रसनेन्द्रिय का तो पूछो मत, क्या बनी अपने रसनेन्द्रिय, सच बताइए। आप आपके जुबान के मालिक हो कि गुलाम हो? मैं गुलाम का व्याख्यान सुना रहा हूं, क्या मेरा व्याख्यान गुलाम को सुनाकर क्या होगा? इतना हो सकता है कि गुलाम को गुलामी का बोध हो जाए और वो मालिक बनने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे मालिक का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, ऐसे मालिक का जन्मोत्सव मना रहे हैं कि जो अपने भाग्य के मालिक बने, तन के मालिक बने, मन के मालिक बने, इंद्रियों के मालिक बने, वे सही अर्थों में स्वामी बने। क्यों उनको भगवान कहते हैं? वो अपने शरीर के गुलाम नहीं थे, वे अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं थे। उनकी कृपा है, उनकी कृपा है कि 18 साल तक उनकी आहार की सेवा करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया और 18 साल में एक प्रसंग मेरे पास नहीं है कि जिस दिन उन्होंने कहा हो कि यह सब्जी नहीं वह सब्जी दे। नो चॉइस, जो दिया ले लिया, नो चॉइस। क्योंकि उनको क्या चाहिए था? ज्ञान चाहिए था। क्या चाहिए था? और किसका ज्ञान? स्वाद का ज्ञान। किसका ज्ञान? रसनेन्द्र से किसका ज्ञान लेंगे? स्वाद का ज्ञान। आप स्वाद लेते हो, वे स्वाद का ज्ञान लेते थे। अयम्बिल तप करने का इतना ही मीनिंग है कि इस रसनेन्द्रिय को ज्ञानेन्द्रिय बनाना। आई नो बहुत सारे लोग कहते मैं सब उपास पचक दो, वो अयम्बिल लोग को क्या अयम्बिल, वो लुक्का सुक्का खाने के बजाय तो उपास अच्छा है ना, ना? लेकिन खाना और खाने के साथ संयम रखना ये तप है। और उस समय अपने मन को इतना स्वामी बनाकर रखना ये तप है। ऐसे गुरुदेव का अयम्बिल तप सर्वाधिक प्रिय था। तो आज उनके जन्मोत्सव के अनुष्ठान में कौन से तप का दिवस है? अयम्बिल तप का दिवस है। और मैंने क्या कहा आपको? क्या कहा मैंने आपको? सुबह जो तुम उद्योग में मुझे बिना पूछे करके आए वो भूल जाओ। ऐसे आपको क्या क्या बातें बताऊं मैं अब? लेकिन हमारे आगम में गया है, शिष्य ने भक्त ने कैसे रहना चाहिए कि दिन की शुरुआत करने के पहले गुरु को भगवान को पूछना चाहिए कि आज का दिन मैं कैसा रहूं, क्या क्या मैं आज करूं, स्वाध्याय करूं, सेवा करूं, उपास करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये पूछने का विधान है समाचारी में। हेलो, आप लोग के जान रहे? चलो कोई बात नहीं, जिस साथ थे वो घना अच्छा हो, लेकिन यहां से आगे क्या करना है आज? बाबू सेठ नहीं बोल रहे, मैं और आवाज इंतजार कर रहा हूं। नहीं आठों आगे बाबू से यहां से आगे आएंगे अरे बाबू सेठ आठो आगे आएंगे दादा ऐसा तो पोता कैसा निकलेगा है ना। अरे वो मिनल को थोड़ी प्रेरणा लेना, हाँ उसकी तरफ से प्रेरणा लेना। बाबू सेठ के अलावा कौन कौन सभा में बाबू सेठ जल्दी खड़े रह जाओ। बाबू सेठ के अलावा कौन कौन बाबू सेठ है खड़े रह जाओ। हेलो जका ऑनलाइन सुन रहे होशिला ने मैं सोच रहे होशिला अच्छे हुयो अपन नहीं गया। लेकिन मैं अगला वाक्य बोल सकूं जका जका ऑनलाइन सुन रहा है वहने भी आई मेरे पचकड़ आज आई एम बिल। हेलो बोलो जल्दी से आज आई एम बिल पक्का ही है ना। आपको ये पता चल ही गया होगा कि गुरुदेव की कृपा से एक छोटा सा संवाद सुना देता गुरुदेव के साथ का। गुरुदेव मुझे हमेशा कहते थे थोड़ो खर्चो कम कराया कर। क्या खर्चो कम कराया कर। और मैं गुरुदेव को बड़े मेरी भाषा में जवाब देता था गुरुदेव तुम गरीब के बेटे हो। किसके बेटे हो? मैं श्रीमंत का बेटा हूं। मेरे गुरु खरबपति हैं, आपके गुरु रतन ऋषि जी महाराज साहब, मेरे गुरु आचार्य भगवंत। अब आचार्य भगवंत का चेला होकर के मैं गरीब जैसा जीऊंगा तो आपके नाम पर उंगली उठेगी। हेलो कितने श्रीमंत बाप का बेटा गरीब जैसा रह रहा है। तो इसलिए मैं वो रिटेल दुकान चलाता नहीं। रिटेल दुकान चलाता नहीं। रिटेल दुकान मुझे कही है घर घर जाऊं नो हे भो तो आए मिलकर ये तो आए मिलकर ये तो आए मिलकर थारा घर से एक तो भी आए मिल होने चाहिए। ये अपने को रिटेल दुकान अपने से बस की बात नहीं है। दुकान कैसी चलानी चाहिए? होलसेल। कैसी? होलसेल। होलसेल हाँ एक ही बार अठैया भी कैसी होलसेल, तेरे भी कैसे सामयिक भी कैसे और कल नौकार मंत्र का जाम भी कैसे होलसेल। कितना होलसेल? रेंदे रेंदे रेंदे उठे रेंदे उठे रेंदे बैठे रहे शांति से। कल जाप कितना है? कितना है? नहीं कल का जाप जाएगा 5 करोड़ पर। कल का जाप जाएगा 5 करोड़ पर। कल युवकों की मीटिंग हुई और उसके बाद बोल रहा हूं मैं। सारे युवक लगे हैं काम में, पूरी टीम लगी हुई काम ने और उन्होंने तय कर लिया है कि हमारा दोस्त चाहे जिस परंपरा का हो उसको कल यहां लेकर के आना ही आना है। और आज आपको भी यही पचखान देने जा रहा हूं। तुम्हारी जितनी सहेलियां हैं, हेलो जितनी तुम्हारी घर में काम करने वाली है नहीं है कि ठीक काम करो घर में हा? नहीं ना। तो जितनी घर में काम करने वाली उन सबके परिवार लेकर के कल आना है। नो टेंशन। कल रात में तीन जगह जाप की व्यवस्था की गई है, वो बड़ा पंडाल, ये पंडाल और आनंद धाम, वो सामने का 1 लाख 1.25 लाख का पंडाल, वो ये और वो, इसलिए थे टेंशन लोच मत, जितना ने लाओ ना उतना ने लाओ, यहां स्क्रीन लगेगी वहां स्क्रीन लगेगी। और मुझे लोग कहते हैं महाराज साहब तुम पट्टे पर कम दिखते हो, स्क्रीन पर ज्यादा अच्छे दिखते हो, बराबर है कि पन थाने सीधो देखना पड़ेगा, थाने स्क्रीन माते देखने की परमिशन को नहीं है। हाँ। कल यहां स्क्रीन लगेगी वहां स्क्रीन लगेगी, और जिनको चेयर पर बैठना है उनके लिए आनंद धाम खुला है, सारी चेयर वहां पर है, जिसको जिसको चेयर चाहिए उसने सीधा कहां पहुंचना। हाँ, गुरुदेव सबको जैसा वो चाहे वैसा देते हैं, इसलिए वहां पर सब जिसको चेयर चाहिए उन सबने कल कहा जाना आनंद धाम पर जाना। यहां पर चेयर साइड में रहेगी, वहां पर चेयर साइड में रहेगी, बाकी सब परिवार के सदन। आना कैसे है कल, कैसे आना है बोलो ना, थान परिवार है नहीं है, परिवार है ना। अरे प्रभु की भक्ति परिवार के साथ करने की, अकेले अकेले करनी, बोलो ना यार। ठीक इसो डरता डरता बोल रहे जैसे तेरे फैमिली में भरोसा को नहीं, फैमिली है नहीं है, परिवार है कि फैमिली है, तो परिवार है तो साथ लेने आओ। जो गृहस्थ हो कि सन्यासी हो, गृहस्थ सन्यासी एकटा जीव, एकटा जीव सदाशिव, ये एक गुरुदेव की माया है। ये किसकी माया है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और बिल्कुल पक्का मैंने अहिल्या नगर को, अहमद नगर था तब भी देखा हुआ है, ये कोई मेरा पहला चौमासा नहीं है, पर है ना, ये अहिल्या नगर बिना गुरुदेव की माया का ऐसा अहिल्या नगर में नजारा हो ही नहीं सकता है। यस और नो, ये किससे नजारा, ये गुरुदेव की कृपा है, नहीं तो थे महाराज सब आउन का पहली व्याख्यान शुरू होने का पहली व्याख्यान में मैक्सिमम आदत कही अपने व्याख्यान रही मंगल पाठ सुनने आओ है ना। लेकिन ये नजारा देखने को मिल रहा है तो किसकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। इसलिए ये जो भी है ना भैया, एक गुरुदेव की है सारा साम्राज्य, किसका एम्पायर है, ये किसका राज है, गुरुदेव का राज है। ये अलग बात है कि गुरुदेव के राज पर मैं राज करता, वो अलग बात है। अरे बाप के राज्य पर बेटा नहीं राज करेगा तो कौन मुनिम करेगा क्या। बेटा भाग्यवान है या नहीं ये परमात्मा जाने, लेकिन मेरे गुरु ऐसे बाप थे कि जिसके सिर पर उन्होंने हाथ रख दिया वो भाग्यवान हो गया। यस, जिसके भी सिर पर उन्होंने हाथ रखा वो भाग्यवान हो गया। मैं भाग्य लेकर के जन्मा नहीं हूं, लेकिन उनके चरण पर मत्था टेका और सारी ललाट की लेखाएं चेंज हो गई। तो कल कैसे आना है, कल कैसे आना है, केवल अपने परिवार के साथ या दोस्तों के परिवार के साथ। और परिवार के साथ आते समय तीन बातों का पूरा ध्यान रखना, सुबह खाली पेट आना है, कैसे आना है, नो पानी पीना, नो चाय, नो नाश्ता, आज करके आए ठीक है, कल बिल्कुल नहीं, तप के साथ जप होगा, इसलिए आयम बिल करा रहा हूं आज आपसे कि आयम बिल के साथ तप के साथ जब जप होगा तो जप सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। और बैठना परिवार के साथ है, चमड़े की कोई वस्तु साथ में लेकर के आनी नहीं है। और जो तुम्हारे लिए सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है चप्पल शूज, इस अनंत धाम के रोड पर कल चप्पल पहन करके चलने के पचकान है। जो भी चप्पल है वो कहाँ रहेगी, गाड़ी में रहेगी, स्कूटर पर रहेगी या घर पर रहेगी। वो चाहे तुम मार्केट यार्ड में पार्किंग करो, चाहे आईटी में पार्किंग करो, चाहे कहीं पर भी पार्किंग करो, वहां से लेकर तो यहां तक कैसे आना है, बोलो जल्दी कैसे आना है। और देख लेना एक बार गुरुदेव की तरफ, हम लोगों ने तो चप्पल बहुत जल्दी पहन ली, हम लोगों ने चप्पल बहुत जल्दी पहन ली। गुरुदेव ने 75-74 साल तक, कितने साल तक, 74 ईयर तक जितनी भी अपनी पद यात्रा करी है, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान में घूमे, पांव में छाले आए, लेकिन पांव में चप्पल नहीं थी। 74 में भी तपस्वीराज मगन मुनि जी महाराज साहब ने वो कपड़े सी करके जबरदस्ती पहनाई थी। तो उनके जन्मोत्सव में कम से कम 126वां जन्मदिन है, कम से कम 126 कदम तो बिना चप्पल के आओ, बोलो जल्दी कितने कितने कदम। यस, चप्पल कहाँ रहेगी, घर में, गाड़ी में, स्कूटर में। नो लेदर, नो चप्पल, पेट खाली, बैठना परिवार के साथ, इधर बहने इधर भाई, ऐसा कल डिवाइडेशन होगा नहीं, भाई बहन सब साथ में ही विराजमान होंगे। और आइए सुनते हैं, आग्रह करता हूं हमारे ओके ड्रेस कोड का नहीं कहता मैं, अभी ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं देता हूं, लेकिन पानी के लिए जो है चांदी का या तांबे का ग्लास लोटा कुछ साथ में लेकर आ जाना। और प्रासुक पानी लाना, कौन सा पानी लाना, प्रासुक पानी लाना, जिसके कारण से जो तपस्वी होंगे वो भी उसको ग्रहण कर सकेंगे, इसलिए प्रासुक पानी लाना, साथ में तांबा या चांदी का लोटा ले आना, जाप के समय में उसको पानी में रखना, पानी सामने रखना। और 2.5 करोड़ नहीं, कितने, 5 करोड़ नौकार मंत्र के वाइब्रेशन से जिस समय गुंजित हो जाएगा, स्पंदित हो जाएगा, तो पानी नहीं रहेगा, क्या बनेगा, वो अमृत बन जाएगा। नमस्कार, महामंत्र में अनंत तीर्थंकरों की शक्ति, नमस्कार महामंत्र में अनंत सिद्धों की शक्ति, नमस्कार महामंत्र में अनंत आचार्यों की शक्ति, नमस्कार महामंत्र में अनंत उपाध्यायों की शक्ति, नमस्कार महामंत्र में लोक के सारे साधुओं की शक्ति, सारे शक्तियों को नमस्कार है उसमें। और वो स्पंदन परिवार के साथ करका अनुभव लेना है, परिवार के साथ आना है, मित्र परिवार, स्नेही परिवार। और एक आक्रमा के बोलू, देखो थाने हजम हुए कि जिसके साथ तुम्हारा 36 का आंकड़ा है उस परिवार को भी लेकर के आ जाना, पक्का 63 हो जाएगा। जिसके साथ तुम्हारा 36 का आंकड़ा है उसको भी लेकर आ जाना, वो भी 63 का हो जाएगा। सर्व पाव पनासन, सारे पापों का नाश करे वो नौकर मंत्र। और आइए एक ऐसे ही बैठे रहिए, मंगल पाठ बाद में दूंगा, पहले हमारे हबप जो आज जिन्होंने अपने कुति से उपदेश दिया है, जिन्होंने अपने आचरण से उपदेश दिया है, जिन्होंने प्रैक्टिकली उपदेश दे दिया है, और जिनका प्रैक्टिकल उपदेश इतना स्ट्रांग है, उनके शब्द कितने स्ट्रांग होंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप भी थोड़ी कृपा बरसाएं। हाँ, 7 से 9 कभी भी आना, कभी भी जाना नहीं है। 7 बजे के बाद अंदर एंट्री नहीं है, 7 बजे के बाद अंदर एंट्री नहीं है। जहां पूरा हुए बिना कोई उठ सकेगा नहीं है। नहीं नहीं, थाने जिसे पहने उसे पहनो, है ना। थाने जितना साड़ी रो शो करना कर लो, है ना। और किसी ने भी किसी के लिए जगह रिजर्व करनी नहीं। मेरी कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी रहेगी, तुम्हारा रिजर्वेशन चलेगा नहीं। नहीं, वो बाद में आवन वालों है, नथिंग। साते लाओनो, साते बैठनो, साते उठने, साते जाओनो। नहीं, वो बाद में आईला चाणीला कोनी, वो बाद में आईला तो बारेज बैठेला, आगे नहीं आ सकेला। धन में आई ना व्यवस्था। ओके,
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषिजी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आत्ताच आपण ऐकलात।
2: मानवी तस्करीच्या विरोधात कृतिशील संघर्ष करणारे स्नेहालयचे संस्थापक डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या आजवरच्या वाटचालीचा प्रवास उलगडणाऱ्या अप अगेन्स्ट डार्कनेस या मेधा देशमुख भास्करन यांनी लिहिलेल्या इंग्रजी पुस्तकाचा फिटे अंधाराचे जाळे हा मराठी अनुवाद केला आहे सुनंदा सदाशिव अमराबूरकर यांनी। सकाळ प्रकाशनानं प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाचं अभिवाचन आपण आता रेडिओ नगर 90.4 FM वर दर रविवारी रात्री 8 वाजता क्रमशः ऐकू शकाल। अभिवाचन केलं आहे रिमा सदाशिव अमराबूरकर यांनी।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के

0: ज्यादा वफादार है। आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।